करे साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म बनाए सी हुक्म न होवे प्रवार दा कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनोचिंत्या सो फल पाए।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमितोज कहज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत छुटत प्रवाह अमेय अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करहे मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे काब काल्य ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योतरली संपूर्ण थिया राम कान हर बूंद बसाओ रो मावल कुसुम बसंत गनंत नायावै राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के काब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवै एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल
ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤੇ ਸਾ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤੇ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤੇ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ ਜਿ

जैत सरे महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरा हियर रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नाव जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पाए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहु तेन सब जन्म अकथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तेन सफल ओ जन्म सनाथा मोका की जय दास

हम अंधोले ज्ञानहीन अज्ञाने क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधोले काओ गोर अंचल दीजा जन नानक चल है मिलंथा। हम अंधोले ज्ञानहीन अज्ञाने क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधोले काओ गोर अंचल दीजा जन नानक चल है मिलंथा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हीर रतन नाम हर बसया। गुर हाथ धरयो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रेन लाथा।

फिले सगले जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया।

तेरा नाम है अदारा, जो हमरी विधुति मेरे सतगुरा साबित तुम कर जानो वापे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे गम थापें।

एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरित शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरुख अपरंपर करता जी तुद जे वाड़े अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई। रहाउ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ै पईले निवासा। पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाउ
ना हौ जति सति नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै,

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला।

तुम करो सिख उबार असिख संग रहो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलीश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो ताकि ताप तनक मह हारे हो रिद सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर

पावै। सदा सिखत सलाह तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहै नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारु, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ। जिस दिया एह वडियाईया, कहै नानक सुनहो संतह, शबद धरहु प्यारु। साचा नाम मेरा आधारु, वाजे पंच शबद तित घर सभागै। घर सभागै शबद वाजे, कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वासे कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कहै नानक तह सुख हुआ, तित घर आन।

साध की शोभा आत्मसकिनी संत वडाई हर जस चीनी आनद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन हो वह एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद बिसराम उन संग सो पाए जिस मस्तक कराम।

जिस पास बैठियां सोहिए सवना दिसाहु, सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे। जिस पास बैठियां सोहिए सवना दिसाहु, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला पांजवा, मोहे मसकीन प्रभ नाम आधार,

मोहे मसकीन प्रभ नाम आधार, खाटन का हर हर रोजगार, सांचन का हर एको नाम, हालत पालत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार, रहाओ साध की शोभा आत्मसकीनी, संत बड़ाई हर जस चीनी, आनंद संतन के भगत गोविंद, सुख संतन के बिनसी चिंद, जह साध संतन होवह एकत्र, तह हर जस गावह नाद कावत, साध सभा में आनंद विश्राम, उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम, दोए कर जोड़ करी अरदास,

मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सजिया पीनर च्यों नाओ दुई कुदरत सजिया करा संडिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो इस सब से दे लैसे जिंद गवाओ करा संडिठो चाओ करा संडिठो चाओ।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग है प्रेजंत विस्माद पुण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेढे विडानी

पछाड़ै धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सचनाम जा का किया सगल जगान सेवक सेवै करन चढ़ाओ पिनी रहण जनाम चाओ सिखे सिख्या गुरु विचार नंदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मधानिया अनगा पंखी पौनिया लैण ना सा सुवै चाड़ पुआई है जंत नानक पौंदियाँ गणत नानत बंधन बंद पुआए सोए पया कृतन चै सब कोए नाचना चखसै चलै।

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पहे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे

आकार सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा।

हेता दीपालोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडा जय जुत पूजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना।

सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मालनासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग।

0: अपरंपर वीणा।
1: खेल गुरो कियो हर राय संतोख समाचरयो, विमल बुद्ध सतगुरु समानो अजोनी संभव्यो, सो जस कल कवियन बखानयो, गुरु नानक अंगत वरयो, गुर अंगत अमर निधान, गुरु रामदास अर्जन वरयो, पारस परस परमान, सत जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभव्यो, पै भंजन दुख निवार पार नंभो, अगह गहन प्रमपात दहन शीतल सुखदातो, असंभव उद्वयो पुरख पूर्ण विधातो, नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो, धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
2: जय जयकार जास जग अंदर, मंदर भाग जुगत शिव रहता, गुर पूरा पायो बडभागी, लेव लागी में दन पर सहता, पै भंजन पर पीर निवारण, कल सहार तोहे जस बकता, कुल सोडी गुरु रामदास तन, धर्म तुजा अर्जुन हर भगता, त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण, शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारण, महादान सतगुर ज्ञान मन जाओ न हुटे, सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध नानक हुटे, गुरु रामदास तन सर्ब में सह चंदो आताण्यो, गुर अर्जुन कल

0: कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो। तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रहन बास जाको हित नाम स्यों। परमे अतीत परमेश्वर कै रंग रंगे हो बासना तै बाहर पै देखियत ताम स्यों। अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कहेत पाए रहो मिल राम स्यों।
1: अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महाशिव जोग करे हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख को टिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत छुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर हृदय पुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
2: जब लो नहीं पाग ललारू दे तब लो

तत् विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना।

0: की गोरे रामदास राखूं सरना।
1: सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाय, दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सहंद साह, जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाह। सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस

हमारे बिना हमारे जियो। हर बिन मुक्त ना काहू जियो। सुन हो संत प्यारे बिना हमारे जियो। हर बिन मुक्त ना काहू जियो। रहाओ

जबर जंजाल तेरे काहू न काम जियो। जीवन देव पार ब्रह्म सेव एहो उपदेश मोक गुर दीना जियो। तेस स्यों ना लाई हीत जाको किश नाही बीत। अंत की बार ओह संग ना चले मन तन तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे

आवर आस काश पटल ना की जय। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा की जय। गोह पार ब्रह्म शरण, हृदय कमल चरण। अवर आस काश पटल ना की जय। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई,

जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुनहो संत प्यारे बिनो हमारे जियो,